दोस्तों, जिंदगी भी कुछ पतंग की तरह ही है। कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू जाती है तो कभी हवा का रुख बदलते ही डगमगाने लगती है। लेकिन पतंग की तरह ही इंसान की जिंदगी में भी उड़ान का अपना एक मजा है। कभी धूप, कभी छांव, कभी जीत की खुशी और कभी हार का अनुभव। बस फर्क इतना है कि पतंग को उड़ाने के लिए डोर चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हौसला। डोर हाथ में हो और मन में विश्वास, तो आसमान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उड़ान जारी रहती है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें कोई ऐसी खूबसूरत सौगात देती है ना, जिसके बाद लगता है कि अब और कुछ पाने की चाह ही नहीं रही। किसी अपने का साथ, उसकी मौजूदगी और उसका प्यार, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो हमारी पूरी दुनिया बना देती है। मोहब्बत में भी तो यही एहसास सबसे खास होता है, जब एक इंसान का मिलना ऐसा लगे जैसे उसके साथ ही खुशियों की पूरी दुनिया मिल गई हो।

जिंदगी का सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कदमों के साथ कोई गीत भी चलता रहे। रास्ते चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर मन में उमंग हो और होंठों पर कोई मीठी धुन, तो सफर की थकान भी जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। संगीत में यही तो जादू है, ये हमें मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सिखाता है और हर नए मोड़ को उम्मीद के साथ अपनाने का हौसला देता है।

कहते हैं जब दिल खुश होना तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है और कदमों में अपने आप एक नई रफ्तार आ जाती है। प्यार और खुशियों से भरा यही एहसास इस गीत में बड़ी खूबसूरती से झलकता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही भोर सुहाने कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the president will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara.

पे वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था. और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लाइन. उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था. प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था. जल का

0: मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे। उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
1: जल
0: फॉर्मेशन।
1: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से, उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
2: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं, जमाने से चला आ रहा है। ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है, सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है, उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की
1: जी
2: वजह से, वो भी है। और चौथा जो है, वो हर जगह आप देखने को मिलता है, पूरे भारत में जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है,
1: जी
2: नमक जहां से पैदा होता है,
1: दादी
2: जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का आप प्रयोग कर नहीं सकते हैं, चूंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है इस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
1: जी हाँ
2: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई। बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: जी हाँ खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहां का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुंचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम
2: और
1: कह
2: आप
1: सकते
2: देखिए ना,
1: हैं।
2: पानी, नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है,
1: जी
2: पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है।
1: जी
2: पूरे परिवार को पानी मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है,
1: बिल्कुल।
2: जीवन रक्षा की बात हो गई।
1: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
3: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी

0: जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में न जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था। पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी?
2: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज़ प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहाँ पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहाँ पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बजाय सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इम्प्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इम्पोर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है, जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते, नर्मदा डैम उन्होंने कंप्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं then everybody gets involved. ये कैच द रेन एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितने भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते हैं, उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें टीम ये था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बगरा नंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जाना चाहूँ, हम सौनी योजना की बात कर रहे थे, तो सौनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
3: देखिए,

0: पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट एक बकरा नंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी
1: जी
0: पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर पाएगा,
1: स्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जाना चाहूँ, हम सोनी योजना की बात करें तो सोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
2: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सोनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है। और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है
1: जी।
2: और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
3: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है, एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है, वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
3: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन ए वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था, एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ, तो अगर अमरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है, और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
2: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए, पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो।

0: तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलम सुफलम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, पारंपरिक आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
0: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है, वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया। तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉस ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM। तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठ को तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन देने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी के बजट का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगनेंट वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक नया सोच था ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां, जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गाँव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
0: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं।
1: जी,
0: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे, बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे, नहीं।

0: और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
2: Reuse of water, grey water, is an important मुद्दा है, but I would say that more than reuse of grey water, हमको what we should look at is reuse of all treated water. Sewage water को भी treat करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% water usage agriculture में होता है, वैसे होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर तो ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
2: उसी तरफ से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट ड्यूअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें ड्यूअल पाइप लगाए और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ, बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
2: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेड फोर्ट से, दैट वाज वाज एडिंग एस द वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू द फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इंपॉर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन, हाउस ऑफ फॉर द वुमन, गिव सेविंग देम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन अ ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया, सेकेंड अच्छा पानी, पीने का पानी, पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसके वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर

0: फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट. ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हो, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस. एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड, व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन में, दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है. और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का, प्लम्बर्स का, लोकल का करना, ये सब जल जीवन मिशन का हिस्सा है एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस.
1: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक, क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहाँ फोकस पानी पहुँचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव है और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है. और जहाँ तक बात आगे के लिए है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल, उसकी संस्कृति जो विकसित हुई, वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को, जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है. हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए. देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी. लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है. और अब ये केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो.
1: जी
2: चुनौती यही है,
1: यही चुनौती है. और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना, इससे निपटना है. और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
1: जाना ही चाहिए. और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है. अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
0: दिस इज अ वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर. पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें. बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वही को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है. तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं. एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं. सेकंड पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, महिला, मर्द, सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं. और अपने घर में, अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है. क्योंकि पहले हम देते थे ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे, 2 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर तक किया. अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाते हैं और एनर्जी का भी सेविंग होता है. तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन.
1: जी अमरेंद्र जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था, मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
2: देखिए ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी, ठीक है. दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए. कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है. और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की, कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो है वो विकसित की जाए, उनको एडॉप्ट किया जाए. जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी है, जो मोटे अनाज है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है. वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है. सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है.
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इंडिया में 85

0: 80-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है। तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन पीएम केएसवाई, हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन
1: जी, ड्रिप इरिगेशन।
0: को बहुत प्रचार किया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी एक कर लिया, और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर सिद्ध हो रही है, और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरेंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

Namaste, Hyderabad. Good morning, good morning. A very warm welcome to everyone who's tuned into Rainbow FM 101.9. मैं हूँ आपकी आरजे दिव्या और आज के अगले चार घंटे हम साथ हैं. आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और मे बी ऑलरेडी ऑफिस पहुँच गए होंगे. कोई घर पे ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होंगे और कोई किचन में बिजी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि आज काम पे जाना ही या एक और कप चाय के बाद डिसाइड करेंगे. वॉट एवर यू आर डूइंग, वेर एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, वेलकम टू योर मॉर्निंग विद रेनबो. नमस्ते, हेलो, आदाब. रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है. रेनबो तो जीवितम रंगुलमयम. आज है 21 सितंबर एंड यू नो वॉट, टुडेज डेट कम्स विद अ ब्यूटिफुल थॉट. इट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस. पीस, शांति, प्रशांतता. कितना सिंपल सा वर्ड है ना, बट समटाइम्स गेटिंग दैट लिटिल बिट ऑफ पीस इन आर डेली लाइफ फील्स लाइक अ बिग अचीवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग बाय टॉकिंग अबाउट समथिंग वी ऑल वॉन्ट अ लिटिल मोर ऑफ, पीस. एंड ऑफकोर्स वील हैव सम ब्यूटिफुल म्यूजिक अलॉन्ग द वे. सो लेट्स बिगिन. हियर कम्स योर ट्रैक.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to the 10:30 AM update of the ongoing live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026. और दोस्तों आज की खुशखबरी बस बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि शूटिंग की दुनिया से अभी तक कुल मिलाकर 4 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। और अगर आज की खास तौर से बात करें तो आज शूटिंग की दुनिया में हमने देखा किस तरह से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया। एंड द बेस्ट न्यूज दैट केम was from the world of individual shooting के अंदर, जिसमें 10 meter air rifle में हमने देखा कि हिमांशु ढिल्लो ने he finished with a score of 252.4 finishing second, वो हमारे लिए लेकर आए silver medal। और वहीं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल brought us the bronze with a score line of 230.9। चाइना के शेंग लिहाओ won the gold medal with 254.2। That was one of the best news over here with us today, this morning, Abhinav, indeed.
2: Of course, excellent news from the world of shooting, Sakshi, because shooting mein hume, team event mein bhi, 10 meters air rifle team event mein bhi, we got silver. Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. याद दिलाएं, हिमांशु ढिल्लों अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, तो शानदार शुरुआत हुई है उनकी और शानदार शुरुआत हुई है इंडिया की शूटिंग से।
1: जी, और अभिनव थोड़ा आप हमारे आज श्रोताओं को स्कीट के बारे में बताना चाहेंगे, जो स्कीट के भी शूटिंग के इवेंट्स चल रहे हैं, एक खुशखबरी वहां से भी थोड़ी दी जाए।
2: जी हाँ, शूटिंग के स्कीट मेंस टीम फाइनल में इंडिया के भवतेश सिंगल, एजेएस नरुका और मेहराज अहमद खान स्कीट के फाइनल में है। अभी 5th पोजिशन में करंट अपडेट है इंडिया का स्कीट में, तो होपफुली दे इम्प्रूव।
1: Yeah, long way still up ahead for our Indian shooters. लेकिन शूटिंग की दुनिया से अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं and let's also look at what happened in Regu today and not much good news over there because Japan ने वहां पर भारत को 3rd और final group B match में team Regu event के अंदर 2-1 से हरा दिया। Yes, the result meant that Japan won the overall tie 2-1 with India having taken the opening match earlier in the contest. तो शुरुआत में जीत एक राउंड के अंदर हमें हासिल तो हुई थी, लेकिन जापान अंत में बाजी मार गया भारतीयों के हाथ से।
2: जी हाँ, रेगू में तो इंडिया की अच्छी आज शुरुआत नहीं हुई है, मगर बॉक्सिंग में शानदार शुरुआत। मेन 70 kg राउंड ऑफ 32 में सुमित कुंडू ने अपना मैच जीता थाईलैंड के बैनजोंग सिनसिन के खिलाफ 5-0। जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिया इनको ऑफ 10 इन ऑल द राउंड, सो अ सुपर्ब स्टार्ट फॉर सुमित देयर। एंड साक्षी, सुपर्ब स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन इन देयर हॉकी मैच।
1: इनडीड, एंड व्हाट अ स्टार्ट, प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि आज भारत एक बहुत ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग कमांडिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा, एंड दैट इज हाउ दे आर टर्निंग आउट टू बी अगेंस्ट इंडोनेशिया। बराज ऑफ गोल्स इंडियन वुमेन्स टीम की तरफ से हैव टेकन इंडिया टू अ 9-0 लीड इन द फर्स्ट हाफ। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ के बाद भी जब खिलाड़ी वापस आए हैं तो भारतीय खिलाड़ियों ने फिर से अपना दबदबा दोस्तों दिखाना शुरू कर दिया है। 2-0 की लीड ले चुके हैं अगेंस्ट इंडोनेशिया। ऋतुजा पिस्ला, लारे सैमी, साक्षी राणा आर गोल स्कोरर्स फॉर द डे। अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कमांडिंग स्टार्ट बाय इंडियन वुमेन हॉकी टीम।
2: जी हाँ, हाफ टाइम पे 6-0 स्कोर है इंडिया और इंडोनेशिया का हॉकी मैच में। मगर कबड्डी की बात करें जाए तो आज इंडिया का मैच जापान के साथ चल रहा है ग्रुप ए में। जापान की शुरुआत अच्छी थी बट इंडिया इज इन टोटल कंट्रोल राइट नाउ, 42-17 से इंडिया लीड कर रहा है आज जापान के अगेंस्ट। सो ट्रिमेंडस स्टार्ट फॉर इंडिया। एंड ऑफकोर्स हम मेडल्स की बात करें तो

0: पास एक और मेडल आज गारंटीड हुआ है, वो है ब्रॉन्ज मेडल. एंड साक्षी, ट्रेमेंडस एफर्ट देयर बाय सुचिका तरियाल.
1: यस इंडीड. बट ऑल्सो अगर बात करें तो आज हम सभी ने देखा किस तरह से उनकी आंखें अभिनव नम हो गई थी लास्ट में, बिकॉज शी वॉज होपिंग टू नॉट गेट द ब्रॉन्ज बट रादर गो फॉर द सिल्वर फॉर इंडिया. बट वी हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज. अ वेरी हार्ट फेल्ट एफर्ट बाय द यंग गर्ल ओवर देयर फॉर इंडियंस. डेफिनेटली उनके लिए आगे उनका भविष्य भारतीय खेल और भारतीय दुनिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है. हियर्स टू हर मेकिंग इंडियंस प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ मेडल इज अ मेडल. एंड फॉर दैट हार्ट फेल्ट विन दैट शी बॉट फॉर इंडिया टुडे, हियर्स अस अप्लॉडिंग हर एफर्ट्स. विद दैट आई थिंक अभिनव, अभी वक्त हो गया अपने श्रोताओं से इजाजत भी लेने का.
0: जी हाँ, एंड प्लीज ट्यून इन बैक विद अस एट 11:30 AM. आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा आकाशवाणी पे. इंडिया इज राइट नाउ 10th ऑन द मेडल्स टेबल. 6 मेडल्स हैव ऑलरेडी कम, होपिंग फॉर मच मोर. स्टे ट्यून टू आकाशवाणी.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: Well, welcome back, listeners. You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, Arjya Divya, and that was an update regarding 20th edition of Asian Games held at Japan, and India is rocking. So everyone who is listening to that, always support India, and that would cheer them up, and it could make us proud again. So back to today, and now there's another important observance today: World Alzheimer's Day. September 21 is also observed as World Alzheimer's Day during World Alzheimer's Month to raise awareness about Alzheimer's disease and other forms of dementia. Now, this is something we need to approach with a little more sensitivity. We all have people in our families who are getting older. Grandparents, parents, elders who have given us so many memories. And now, memories are such a beautiful part of our lives. One old photograph, one familiar song, and one smell from the kitchen. And suddenly, you're back in your childhood. Arre, yahan, ye to wo wala din tha. Oka paata vinte, childhood mottam gurtostundi. That's the magic of memories. World Alzheimer's Day is also a reminder to create awareness and understanding around Alzheimer's and dementia, and to be supportive towards people living with these conditions and their families. So maybe today, call an older family member, ask them about their childhood, ask them about their first job, ask them about their favorite song. Vala stories vini konjam time spend cheyandi, because sometimes we think we are giving them our time, but actually they are giving us their memories. Stay tuned, here comes another beautiful song.

Welcome back, listeners. That was a beautiful song from Munna Bai, Pal Pal Har Pal sung by Shreya Ghoshal and Sonu Nigam. तो अब थोड़ा समझते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज एक्चुअली है क्या. अक्सर हम अल्जाइमर्स को सिंपली भूलने की बीमारी कह देते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली मच मोर देन दैट. अल्जाइमर्स इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द ब्रेन, especially the areas responsible for memory, thinking and learning. शुरुआत में symptoms काफ़ी subtle हो सकते हैं, जैसे recently हुई कोई बात बार बार बोलना, एक ही सवाल बार बार पूछना, सामान रखकर भूल जाना, या familiar जगहों और लोगों को पहचानने में difficulty होना. धीरे धीरे problem बढ़ने पर इसका असर सिर्फ मेमोरी पर नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और एवरीडे एक्टिविटीज़ पर भी पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को खाना बनाना, पैसे मैनेज करना या रोज़ के फैमिलियर काम करना मुश्किल लग सकता है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर भूलने की प्रॉब्लम अल्जाइमर्स नहीं होती. कभी कभी स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एजिंग या कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसलिए अगर किसी व्यक्ति में लगातार या बढ़ती हुई मेमोरी चेंजेस दिखाई दे तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी है. स्टे ट्यून्ड, हियर कम्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्यान। दैट वाज कबीरा फ्रॉम द फिल्म ए जवानी हे दीवानी, संग बाय रेखा भरद्वाज एंड तोची।

ना। सो बैक टू अल्जाइमर्स। अब सवाल आता है, अल्जाइमर्स होता क्यों है? इसका एग्जैक्ट कॉज अभी पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें ब्रेन में एबनॉर्मल प्रोटीन्स का जमा होना, ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन में बदलाव और कई जेनेटिक लाइफस्टाइल और एज रिलेटेड फैक्टर्स की भूमिका हो सकती है। एज एक मेजर रिस्क फैक्टर है, लेकिन अल्जाइमर्स को नॉर्मल एजिंग का हिस्सा समझना सही नहीं है। कुछ लोगों में यह रिलेटिवली यंगर एज में भी डेवलप हो सकता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्जाइमर्स का अभी कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिंस और सपोर्टिव अप्रोचेस सिम्टम्स को मैनेज करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितनी जल्दी कंडीशन आइडेंटिफाई होगी, उतनी जल्दी व्यक्ति और फैमिली फ्यूचर केयर, ट्रीटमेंट और सपोर्ट को लेकर प्लान कर सकते हैं। तो अल्जाइमर्स डे हमें सिर्फ डिसीज़ के बारे में जानने का मौका नहीं देता, यह हमें याद दिलाता है कि मेमोरी लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति की भूलने की परेशानी को सिर्फ उम्र हो गई कहकर डिसमिस नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस, अर्ली मेडिकेशन और अटेंशन एंड फैमिली सपोर्ट, दीज थ्री कैन मेक अ रियल डिफरेंस इन अल्जाइमर्स। विद दैट हियर कम्स अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्या। और आज के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने कई जानकारी दी और आपने भी सुना होगा। अभी टाइम 10:55 हो रहा है और आपके लिए एक और ट्रैक है और इसके बाद न्यूज़ रिले भी आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है, रेनबो तो जीवितम रंगुलमयम। हियर कम्स अनदर ट्रैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्या, एंड दैट वाज कॉन्सिक्वेंसेस संग बाय कैमिला कैबेलो. एंड विद दैट विद इन फ्यू मिनट्स यू आर गोइंग टू लिसन न्यूज हेडलाइंस, सो स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक लिसनर्स. तो आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्या. रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है. और हमने पिछले एक आवर से वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस एंड ग्रैटिट्यूड डे एंड अल्जाइमर्स डे. एंड नाउ आई थिंक आफ्टर टॉकिंग अबाउट पीस, ग्रैटिट्यूड एंड मेमोरीज, वी डिजर्व समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. चाय. Yes, because September 21 is also discovered and observed as National Chai Day. And honestly, chai deserves its own conversation. Because chai is just never just chai. Chai piyega. And suddenly, there's a full conversation, office gossip, family updates, friendship problems, life advice. Everything happens over chai. Ek chai bana do. And that one chai somehow becomes ek aur bana do bhaiya. Hyderabad mein to chai ke saath conversation ka level high alag hai. Irani chai, Osmania biscuit, bun maska, window seat aur samne koi apna insaan. Bas morning set. Me favorite chai inti, strong chai, ginger chai, ilachi chai, irani chai aur... Are you a coffee person? Whatever your choice, a warm cup in your hand and a good song in the background. Life to thodi rangeen to ho jati hai. So with that, here comes an energetic song. Stay tuned.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। अभी अभी हमने बात किया है कि सोना कैसे आता है, एंड आई जस्ट गिव यू अ शॉक दैट अर्थ एक्चुअली कैन नॉट मेक गोल्ड। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट सम ऑफ द गोल्ड इन द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सट्रीमली वायलेंट कॉस्मेटिक इवेंट्स इन्वॉल्विंग न्यूट्रॉन स्टार्स। When two neutron stars collide, an enormous explosion can occur. This is called a kilonova. और ये कोई normal explosion नहीं है. In these extreme conditions, heavy elements including gold can be formed and thrown out into space. Imagine that, आपके finger में जो gold ring है ना, उस gold का story actually jewelry shop से start नहीं हुआ, उसकी story started billions of years ago, somewhere in space. मतलब, शादी के ring के साथ थोड़ा सा universe भी पहन रहे हो, so stay tuned, here comes another beautiful track.
1: सोना
2: सोना
1: सोना
2: सोना

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्यान। दैट वाज सोना कितना सोना है फ्रॉम द फिल्म क्रू, संग बाय आईपी सिंह, नूपुर, अक्षय एंड आईपी। एंड ऑफ कोर्स अब क्वेश्चन ये है, स्पेस में बना गोल्ड अर्थ तक आया कैसे? Billions of years ago, all this material, including dust, gas, and heavy elements, was part of the enormous cloud from which our solar system eventually formed. That cloud is called the solar nebula. Gravity pulled the material together. In the center, our sun was born, and the remaining material gradually came together to form planets, including our Earth. और अर्थ के अर्ली स्टेजेस में जो गोल्ड और अदर हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उनका कुछ पोर्शन प्लैनेट के इंटीरियर में सेटल हो गया। लेटर एडिशनल मटेरियल वाज आल्सो डिलीवर्ड टू द यंग अर्थ थ्रू एस्टेरॉइड्स एंड अदर स्पेस रॉक्स। सो व्हेन वी माइन गोल्ड टुडे, वी आर बेसिकली डिगिंग इन अ वेरी वेरी वेरी ओल्ड कॉस्मिक हिस्ट्री। बट स्टे ट्यून्ड, हियर कम्स फॉर प्रोमोस।
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
1: सिर्फ रातों में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
2: अफवाहों से,
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर, सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।
3: हेलो लिसनर्स, आर यू समवन हु लव्स गेटिंग लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ अ गुड बुक and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
0: Welcome back listeners, you are listening about gold. ओके, इन ऑफ स्पेस ट्रैवल, अब थोड़ा केमिस्ट्री क्लास, पीरियोडिक टेबल याद है? हाँ, दैट बिग चार्ट विद ऑल दोज सिंबल्स दैट वी समहाउ मेमोराइज्ड फॉर एग्जाम्स एंड देन इमीडिएटली फॉरगॉट। देर आर करेंटली 118 रिकॉग्नाइज्ड केमिकल एलिमेंट्स एंड वन ऑफ देम इज गोल्ड। इट्स केमिकल सिंबल इज AU, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम। Gold is also a very unusual metal because it is relatively unreactive. It doesn't easily react with oxygen or water under normal conditions. That is one reason gold can stay shiny and survive for thousands of years. Think about it. A piece of gold jewelry from thousands of years ago can still exist today. Gold basically said, trends may change, but main nahi badlunga. With that, here comes the song. Stay tuned.
4: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: और इन्हीं रुपयों के चक्कर में होते हैं अधिकांश अपराध, जिनका नया रूप है साइबर अपराध। आज के डिजिटल युग में हम सभी इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर अपराध अथवा साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम यानी ऐसा अपराध जो इंटरनेट या किसी भी डिजिटल माध्यम के जरिए किया जाए। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे OTP लेकर पैसे निकाल लेना, किसी का सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट हैक कर लेना या फिर किसी की निजी जानकारी चुराना शामिल है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी को धमकाना, बदनाम करना या फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आज के समय में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है लालच। कहते हैं ना, माया मरी ना मनमरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
1: और इसी के कारण कई अपराधी लोगों को जल्दी पैसे कमाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते हैं। अचरज वाली बात कि ज्यादा पैसे की लालच देकर हद से ज्यादा पैसे की ठगी। दूसरा कारण है कि तकनीकी जानकारी का गलत उपयोग। कुछ लोग कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी का उपयोग सुरक्षा के बजाय अपराध के लिए करते हैं, जैसे हैकिंग या डेटा चोरी। तीसरा बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। जब हम अपना OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा कर देते हैं या अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, तो हम स्वयं ही साइबर अपराधियों को अवसर दे देते हैं। इसके अलावा कम जागरूकता भी एक कारण है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी ऑनलाइन गतिविधि सुरक्षित है और कौन सी खतरनाक। इससे एक बात तो निश्चित है कि साइबर क्राइम सिर्फ तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि लालच, गलत उपयोग और हमारी लापरवाही के कारण भी होता है।
0: इसीलिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही सतर्क हैं। सरकार भी अपनी ओर से इन साइबर अपराधों को रोकने में कई ठोस कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी के I4C की स्थापना की है। इसका उद्देश्य देश भर में साइबर अपराध की रोकथाम, जांच, राज्यों के बीच समन्वय, पुलिस प्रशिक्षण और जन जागरूकता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 82 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इनमें 1,84,000 शिकायतें FIR में परिवर्तित हुई तथा बड़ी संख्या में शिकायतों का प्रभावी समाधान भी किया गया।
1: सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है, जहां नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां संदिग्ध वेबसाइट, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट की भी रिपोर्ट की जा सकती है।
0: हेल्पलाइन 1930। यदि किसी के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करने की व्यवस्था की गई है। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होती है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धोखाधड़ी की राशि को रोका जा सके। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के अनुसार वर्ष 2000

0: 2025 के दौरान राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर 3,24,00,000 से अधिक कॉल्स प्राप्त हुई।
1: वित्तीय साइबर धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFCF RMS, यह प्रणाली बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कानून परिवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करती है ताकि धोखाधड़ी की रकम को जल्द से जल्द फ्रीज किया जा सके। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था से हजारों करोड़ रुपयों की राशि को बचाया जा चुका है।
0: गृह मंत्रालय के ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी के I4C के अंतर्गत संचालित सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी के CFCF RMS की मदद से अब तक 3,61,000 से अधिक साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों में लगभग 8,189 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज या फिर पीड़ितों को वापस दिलाने में सफलता मिली है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी की रकम को तेजी से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी की रकम को तेजी से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: सरकार साइबर दोस्त, सोशल मीडिया, रेडियो, SMS, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है।
0: पुलिस और जांच एजेंसियों का प्रशिक्षण I4C के माध्यम से राज्यों की पुलिस, साइबर सेल और जांच एजेंसियों को आधुनिक तकनीकों, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके। 31 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल पर 1,91,081 अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं जबकि 1,42,025 अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
1: साइबर फ्रॉड पर तकनीकी निगरानी, सरकार बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर फर्जी सिम कार्ड, संदिग्ध मोबाइल नंबर, फर्जी बैंक खातों, म्यूल अकाउंट और साइबर अपराध में प्रयुक्त डिजिटल माध्यमों पर निगरानी रख रही है। साइबर अपराध पर तकनीकी निगरानी को मजबूत करने के लिए सरकार बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर लगातार कार्यवाही कर रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक 7,81,000 से अधिक फर्जी सिम कार्ड और 2,08,000 से अधिक मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं। 24,00,000 से अधिक संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की पहचान बैंकों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। साथ ही 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट, 3,862 स्काइप ID और 1,069 से अधिक संदिग्ध URL भी ब्लॉक किए गए हैं।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के विभिन्न एपिसोडों में विशेषकर 131वें एपिसोड में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरों पर विस्तार से चर्चा की और नागरिकों को सतर्क रहने, किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा ना करने तथा तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की। इतना सब जानने और सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों हम पुनः वही गलती कर बैठते हैं।
1: ग्रेटर नोएडा में एक वरिष्ठ नागरिक को बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया गया। ठगों ने KYC अपडेट और खाते की सुरक्षा का बहाना बनाकर OTP और बैंक डिटेल्स हासिल कर ली, जिसके बाद लगभग 21,00,000 की राशि कई ट्रांजैक्शन में निकाल ली गई। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डिजिटल ट्रायल के आधार पर जाँच जारी है। एक बड़े साइबर सिंडिकेट ने फर्जी निवेश योजनाओं, पार्ट टाइम जॉब ऑफर्स और QR कोड स्कैम के जरिए देश भर में लोगों से ठगी की। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए लगभग 600 करोड़ से अधिक की अवैध धनराशि को म्यूल अकाउंट और डिजिटल पेमेंट चैनलों के माध्यम से घुमाया गया। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम नेटवर्क की बड़ी कड़ी के रूप में सामने आया।
0: इसकी जाँच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हैदराबाद जोनल ऑफिस ने की। जाँच की शुरुआत हैदराबाद में दर्ज मामले से हुई लेकिन पीड़ित भारत के अनेक राज्यों में से थे। हैदराबाद में एक 72-वर्षीय XIAS अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करीब 3 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने खुद को पुलिस और जांच एजेंसियों

0: का अधिकारी बताकर कई दिनों तक वीडियो कॉल पर रखा और पैसे ट्रांसफर करवाए। ये मामला देश में डिजिटल अरेस्ट ठगी के चर्चित मामलों में से एक है। आम नागरिक ही नहीं बल्कि कई मशहूर हस्तियां इन साइबर अपराधियों का शिकार हुई है। प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाई गई और लोगों से संपर्क किया गया। उन्होंने स्वयं लोगों को सावधान करते हुए स्पष्ट किया, ये फर्जी अकाउंट है और इसकी शिकायत संबंधित मंच से की गई है।
1: अभिनेता अनुपम खेर का आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। बाद में उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक की और प्लेटफॉर्म के मदद से अकाउंट बहाल किया गया। इस घटना ने सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
0: साइबर अपराध से बचाव के लिए 10 महत्वपूर्ण उपाय। मजबूत पासवर्ड रखें। हर अकाउंट के लिए अलग अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर, अंक तथा विशेष चिन्ह जैसे @, डॉलर का सिंबल या फिर परसेंटेज वाला प्रयोग करें।
1: टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां भी सुविधा उपलब्ध हो दो स्तरीय सुरक्षा 2FA अवश्य सक्रिय करें। इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है।
0: OTP और बैंक विवरण कभी भी किसी से साझा ना करें। बैंक, पुलिस, RBI या कोई सरकारी संस्था कभी भी फोन पर OTP, CVV, ATM पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगती।
1: अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। SMS, WhatsApp, ईमेल या सोशल मीडिया पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक या QR कोड को बिना जांचे ना खोलें।
0: डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। यदि कोई खुद को पुलिस, CBI, ED, RBI या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराए या पैसे मांगे तो घबराएं नहीं, ये साइबर ठगी हो सकती है।
1: मोबाइल और कंप्यूटर अपडेट रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को समय समय पर अपडेट करें। सुरक्षा अपडेट नए साइबर खतरों से बचाने में मदद करते हैं।
0: केवल आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। ऐप्स केवल Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें।
1: सार्वजनिक वाईफाई पर सावधानी रखें। फ्री वाईफाई का उपयोग करते समय बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान जैसे संवेदनशील कार्य करने से बचें।
0: सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी साझा करें। अपना आधार, पैन, टिकट, बैंक संबंधी जानकारी, पता या फिर अन्य निजी विवरण सार्वजनिक रूप से पोस्ट ना करें।
1: धोखाधड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि ऑनलाइन ठगी हो जाए तो
0: तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.gov.in। जितनी जल्दी शिकायत होगी धन वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक हो सकती है।
1: याद रखिए, साइबर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार हमारी जल्दबाजी और लापरवाही होती है। किसी भी अनजान कॉल, लिंक या संदेश पर तुरंत भरोसा ना करें। पहले सोचें, फिर जांचें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। सतर्क नागरिक ही सुरक्षित डिजिटल भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: जैसे सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की, वैसे ही आइए हम भी 4S को अपनाएं।
1: कौन से 4S?
0: सजग, सतर्क, सूचित, सुरक्षित।
1: अंततः यही कहना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट हो या हो फर्जी कोई कॉल, जागरूक रहे सदा, यही है सबसे बड़ी ढाल।
0: संदेश यही सभी से कि सचेत रहो हर बार, तभी सुरक्षित रहेगा हमारा डिजिटल संसार।
1: ना लालच ना कोई ट्रीटमेंट प्राइम,
0: रहो सतर्क हर टाइम,
1: तभी रुकेंगे साइबर क्राइम।
2: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजग भारत।
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र के अंतर्गत प्रसारित किया गया।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्या। अब तक आप सुना है सजग भारत, इट्स अबाउट डिजिटल अलर्ट एंड हाउ कॉशियस यू शुड बी रिगार्डिंग डिजिटल स्कैम्स एंड साइबर अवेयरनेस। सो ऑलवेज स्टे अलर्ट एंड बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग सम ट्रांजैक्शंस और एनी फेक कॉल्स और मैसेजेस और कोई लिंक्स भी।

हैदराबाद, हम तो बात कर रहे हैं सोना के बारे में, एंड मिडल में थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट और एक प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा ब्रेक ली, पर इधर ही थी मैंने। एंड हम तो गोल्ड के बारे में इतना काफ़ी बात की। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मच गोल्ड इज़ देयर? नाउ हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, गोल्ड फील्स लाइक समथिंग दैट्स एवरीवेयर, ज्वेलरी शॉप्स, गोल्ड चेन्स, रिंग कॉइन्स, बट कंपेयर विथ मैनी अदर एलिमेंट्स, गोल्ड इज एक्चुअली क्वाइट स्कैर्स। एंड बिकॉज गोल्ड इज एक्सट्रीमली डेंस, ऑल द गोल्ड ह्यूमंस हैव माइंड थ्रू आउट हिस्ट्री वुड ऑक्यूपाई अ सरप्राइजिंगली स्मॉल फिजिकल वॉल्यूम कंपेयर विथ वॉट यू माइट इमेजिन। यू नो हाउ मच इट इज? इट्स इक्वल टू 4 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स, एंड इट कुड बी रफली 22,000 मेट्रिक टन्स। सो इफ समवन सेज गोल्ड तो बहुत है दुनिया में, यू कैन से हाँ, बट ट्राई कैरिंग इट, बिकॉज गोल्ड इज सीरियसली हैवी फॉर इट्स साइज। दैट डेंसिटी इज वन ऑफ द रीजन्स अ रिलेटिवली स्मॉल लुकिंग गोल्ड ऑब्जेक्ट कैन वे मच मोर देन यू एक्सपेक्ट। एंड विद दैट हियर कम्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश। स्टे ट्यून्ड।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते।

0: Biz Ayçi Nagoya.
1: आपका स्वागत है एशियन गेम्स अपडेट्स ऑन आकाशवाणी. आपके साथ हैं साक्षी मानवाल और मैं अभिनव पुंछी. और लेटेस्ट खबरें हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं बैडमिंटन के अरीना से, जहां लक्ष्य सेन इंडिया के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है. बांग्लादेश के अजमान के खिलाफ 21-4, 21-12 पहला मैच जीता और दूसरे मैच में आयुष शेट्टी गौरव सिंघा के अगेंस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं. 21-4 पहला सेट उन्होंने जीता और दूसरी गेम में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं. तो बैडमिंटन में आज इंडियन मेंस टीम ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी. और हमारे साथ है साक्षी. एंड साक्षी, शूटिंग की खबरें से हमें प्लीज अपडेट करिए.
2: जी, और पहले तो अभिनव शुक्रिया फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन. जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन. अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ. तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं. वहां पर रायजा ढिल्लो ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का. और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर. वहीं परिणाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया. तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में 3रे स्थान पर. पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ. कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ. और भारत की महिलाएं रही 3रे स्थान पर 132 अंकों के साथ. अब अगर हम मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूँ आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नरुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ. अब आप ये सोचिए. और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे. तो अगर ओवरऑल देखें तो मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ. कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है. तो ओवरऑल मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दे अभिनव.
1: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने. अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस. And they beat Japan 49-24, comprehensive win. और Aichi Nagoya Asian Games में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे men's कबड्डी टीम से, और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारे women's हॉकी टीम से, जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे हैं.
2: जी हाँ जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया. अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं. और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था. एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मैच में, पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच. और आज भी उनका जो योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ वो भी काबिले तारीफ रहा. उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है ऋतुजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी. और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें.
1: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का. मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन और पार्थ माने. और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में, जब रुद्रांश पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू पे एक और मेडल, वो भी सिल्वर. एंड साक्षी, MMA की दुनिया में भी हमने कमाल दिखाया.
2: जी, हमने MMA की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर MMA की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के, सारे चाहने वालों के मन

0: एक हल्की सी कसक रह गई हूँ, लेकिन मुबारकबाद तो देनी बनती है क्योंकि सुचिका तारियाल हमारे लिए, भारतीय सारे फैंस के लिए आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इसके ऊपर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे दोस्तों। एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे 1:30 बजे आकाशवाणी पर विद द ऑन गोइंग लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्या। एंड जस्ट नाउ वी हर्ड अबाउट 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स बीइंग हेल्ड एट जापान, एंड देयर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 विद मी आरजे दिव्यान। दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अंध में आती है वस्ते फ्रॉम द मूवी सुल्तान, संग बाय पृथ्वी चंद्रा एंड विवेक एंड मेरविन। सो टुडे यू माइट हैव हर्ड द क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज दैट वन थिंग यू हेटेड?

0: आज हम दोनों आपके लिए एशियन गेम्स के बीच में सारे लाइव अपडेट्स लेकर आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इस पर्टिकुलर अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। बैडमिंटन की दुनिया में भारतीय शटलर्स ने आज बैडमिंटन में भारत के लिए एक शानदार प्रदर्शन देकर भारतीय शटलर्स और बैडमिंटन की दुनिया में आगाज दिया है। जी हाँ, ऑल द थ्री शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी एंड किदांबी श्रीकांत, ऑल थ्री ऑफ देम वेंट ऑन टू विन द रिस्पेक्टिव गेम्स एंड देयरबाय हेल्प्ड इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स बाय गेटिंग 3-0 क्लीन विक्ट्री। वेरी स्पेसिफिकली लक्ष्य सेन डिफीटेड आयमान जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12। आयुष शेट्टी वेंट ऑन टू डिफीट गौरव सिंघा 21-4, 21-13, thereby putting इंडिया इन अ कमांडिंग पोजिशन ऑफ 2-0 ऑलरेडी एंड also विनिंग पोजिशन। एंड फाइनली श्रीकांत किदांबी केम इन टू प्ले एंड डिफीटेड हिज अपोनेंट अल अमीन जुमार 21-15 and 21-9। इंडिया नाउ फेसेस जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। अभिनव,
1: शानदार शुरुआत भारतीय बैडमिंटन टीम से। और अब बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग अरीना में तैयार रहिए क्योंकि श्रीहरि नटराज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में। श्रीहरि नटराज स्टार्टिंग पोजीशन उनकी 9th है, मगर बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से भारत को एक मेडल दिलाने के लिए। क्या आज श्रीहरि नटराज का दिन होगा? सारी नजरें हमारे इंडियन स्विमर पर है
0: जी। और श्री हरि नटराज को सारे ही भारतीयों की तरफ से विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गिविंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टुडे। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस आल्सो, टेबल टेनिस को दुनिया को बता दें कि भारतीय महिलाओं ने भी आज कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से परास्त करके वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई को जीत कर अपने नाम कर लिया। श्री जाकुला ने जीत हासिल करी पातिमा खान को हराकर 11-4, 11-4, 11-5 से। और फाइनली भारत ने ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आगे बढ़कर अपने नाम को अर्जित करवाया क्वार्टर फाइनल्स की रेस में। एक बहुत जरूरी नाम जो मैं यहां पर लेना चाहूंगी, कहूं अहम नाम दोस्तों, वो है सिंड्रेला दास का, हु वॉज ऑन अ एशियन गेम्स डेब्यू टूडे। और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराकर भारत को एक कमांडिंग पोजिशन में पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा किया था। और इसी बुनियाद पर भारत को पहले 2-0 से एक एडवांटेज मिल गई थी अभिनव, जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीजाकुला ने फाइनली 3-0 से पाकिस्तान को हराकर ये टाई अपने नाम करवा लिया।
1: और जो विमेंस टीम ने करा है, क्या मेंस टीम यही करेंगे आज? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है आईची नगोया में एशियन गेम्स में। ये ग्रुप एनकाउंटर है 3:30 बजे इंडिया और पाकिस्तान एक्शन में देखेंगे। याद दिलाएं, इंडियन मेंस टीम हारे थे ईरान के खिलाफ, तो आज क्या इंडिया कमबैक करेगी?
0: वेल, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज और क्या क्या इवेंट्स आप देख पाएंगे आज के दिन में। पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में वुशु के साथ, जिसमें वुमेन्स सैंडा के 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रोशी बिना देवी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दोपहर 2:30 बजे नजर आएंगी। और वुशु के अंदर ही मेन सैंडा 56 किलोग्राम कैटेगरी में आर्यन भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे दोपहर 2:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर।
1: और आज कबड्डी में इंडियन मेंस टीम ने तो जापान को हराया 49-24, शानदार शुरुआत भारतीय मेंस कबड्डी टीम की। मगर विमेंस कबड्डी टीम भी एक्शन में देखेंगी 4:15 बजे जब उनका मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। तो हम चाहेंगे कि आज कबड्डी में क्लीन स्वीप हो क्योंकि आज इंडिया का मेडल्स टैली तो शानदार रहा है। एंड इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एज फार एज द मेडल्स आर कंसर्न।
0: यस इंडीड। एंड व्हेन वी से ऑफ मेडल्स, शूटिंग की दुनिया को हम क्यों भूलें, सबसे ज्यादा मेडल्स तो अभी तक उसी इवेंट के अंदर से हमारे पास आए हुए हैं। 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, जिसमें 2 सिल्वर कल हमारे शूटर्स ने अपने नाम किए थे और 2 सिल्वर आज हमारे शूटर्स ने अपने नाम किया, और उसके साथ साथ 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को दिलवाया। कुल मिलाकर शूटिंग में अभी तक है 5 मेडल्स। लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि भारत की अंक तालिका में जो अभी स्टैंडिंग है वो 10वें स्थान पर। तो सफर अभी काफी लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे अभिनव बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे इस एशियन गेम्स 2026 के अंदर।
1: जी हाँ, सारी अभी मगर निगाहें हैं श्रीहरि नटराज पे, उनका कंपटीशन शुरू हो गया मेंस 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल पे। श्रीहरि नटराज पूरा अपना जोश दिखा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रीहरि नटराज नहीं कोई भी मेडल जीत पाए। और ये लेटेस्ट अपडेट है, अब हम आकाशवाणी में वापस आएंगे 3:30 बजे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आईची नगोया एशियन गेम्स।

0: हमसे
1: चावल कोई कोई ऐसी चीज नहीं मालूम के जो हम खाए, ना फ्रूट मालूम ना कोई चीज मालूम देती है।
0: तो थैंक यू,
1: ठीक कहा
0: आप
1: ना मैं
0: अपने
1: तुमने
0: सवाल
1: कहा।
0: हमसे शेयर करने से के लिए, एंड नेक्स्ट अप हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से,

0: प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

0: डेटाबेस की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ है अभिनव पुंशी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में इस वक्त बच रहे हैं दोस्तों 5:30 और अभी की सबसे तरोताजा खबर ये है कि कबड्डी में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो चुका है। ग्रुप ए का ये मुकाबला जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करी है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स बांग्लादेश। बाय द एंड ऑफ द हाफ टाइम इंडियन वुमेन वर लीडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश 21-10। जी हाँ, 21-10 से भारतीय महिलाओं को बढ़ोतरी मिली हुई थी और हाफ टाइम के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी भी भारत का जो स्कोर है वो है 39-21। यानी बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा एक तरीके से निकलकर बाहर आ रहा है। सो फार बांग्लादेश ने फाइट तो अच्छी दी है भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन भारतीय महिलाओं के करीब कबड्डी की इस मैच में वो आ नहीं पाए। और एक छोटा सा करेक्शन भी करना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए कि जो कबड्डी के ये मैचेस हैं उसमें भारत के साथ जो उनके ग्रुप ए के अंदर इस समय पेयर टुगेदर हैं वो है ईरान, बांग्लादेश और जापान। आज भारत का पहला मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के खिलाफ जो कि है बुधवार यानी 23 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में, और फाइनली उनका मुकाबला है जापान के खिलाफ 24 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में ही। मेरे साथ है अभिनव। अभिनव, गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम।
3: जी हाँ साक्षी, स्टनिंग स्टार्ट बाय द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम। और अगर मेंस कबड्डी टीम की भी बात करें तो दे आल्सो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट अगेंस्ट द होस्ट जापान। इंडिया ने जापान को हराया 49-24। हाफ टाइम पे इंडिया वाज लीडिंग 31-9। आशु मलिक और देवांग दलाल ने तो अपना कमाल दिखाया ही, और हमारे मेन कबड्डी प्लेयर्स मैच में ज्यादा एंट्री नहीं कर पाए, ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, रेस्ट कर रहे थे। और होस्ट के साथ थोड़ा सा इंडिया ने टेक इट इजी करा एज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन सुनील कुमार, मगर गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन मेंस कबड्डी कंटिंजेंट। अब इंडिया और कोरिया का मुकाबला होने वाला है कल, जब हमारी मेंस टीम चाहेगी थोड़ा मोमेंटम फिर से गेन करें। याद दिलाए इंडियन मेंस भी है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो क्या इस बारी रिपीट होने वाला है? एंड साक्षी, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर अस फ्रॉम द विमेंस मैच, बिकॉज मुझे लग रहा है बस 20 सेकंड बाकी है और इंडिया कंफर्टेबली जीत रही है।
2: हाँ जी, इस मुकाबले में तो भारत की जीत तय ही है, निश्चित हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन वही

0: कहते हैं ना, जब तक ये मुकाबला समाप्त ना हो तब तक समाप्त होता नहीं है। लेकिन अभी अगर विमेंस टेबल टेनिस मुकाबले की भी बात करें तो वहां पर भी दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से आज हरा दिया। मैं बात कर रही हूँ विमेंस टेबल टेनिस टाई मैच की, जो टीम मैच था इसमें श्रीजा अकुला ने भारत की टीम को जीत दिलाई। आखिरी मुकाबले में जहां उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराया एंड एज ए रिजल्ट इंडिया वॉज एबल टू फिनिश एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो इस मैच के अंदर रहा, या मैं कहूँ इस मुकाबले में रहा, वो था सिंड्रेला दास का। इट वॉज अ डेब्यू इन एशियन गेम्स दिस ईयर एंड शी बीट कलसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, जिसकी वजह से भारत को 2-0 से बढ़त मिल गई थी पाकिस्तान के ऊपर। और फाइनली कहते हैं ना कि द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वॉज सर्व्ड बाय श्रीजा अकुला, जिन्होंने 3-0 से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलवा दी महिला टेबल टेनिस के टीम टेबल टेनिस टाई के अंदर। अब भारत का सामना होगा थाईलैंड के साथ कल इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज इनकाउंटर। वैसे तो भारत क्वालिफाई कर गया है लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से कल भारत थाईलैंड के साथ फेस टू फेस आने वाला अभिनव।
1: और जैसा हमने आपको प्रॉमिस करा था वो ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको दे सकते हैं। इंडिया ने अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 42-21, सो वेरी गुड डे फॉर द इंडियन कबड्डी टीम बोथ मेंस एंड वुमेन्स। एंड साक्षी वॉज टॉकिंग अबाउट द टेबल टेनिस टीम और इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम वॉज ऑल्सो अप अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान। और याद दिलाएं इंडियन मेंस हैड टू विन दिस मैच क्योंकि ईरान से हार उनको मिली थी, तो इंडियन मेंस ने पाकिस्तान को हराया 3-0। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हरमीत देसाई, सत्यन गणेश शेखरन एंड प्रयास जैन। एंड इस विन के साथ इंडिया अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्वार्टर फाइनल्स, अभी क्वार्टर फाइनल्स की जगह पक्की नहीं हुई है। एंड ऑफकोर्स लेटेस्ट एशियन गेम्स की सारी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़िए ऑन आकाशवाणी। हम एक घंटे में 6:30 में आपको फिर सारी अपडेट्स बताएंगे आईची नगोया से, सो स्टे ट्यून।
2: ఇప్పుడు 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ విన్నారు. శ్రోతలకు ఒక ముఖ్య గమనిక, ఈ నెల 22వ తేదీ అనగా ఈ మంగళవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి ఐఏఎస్ గారితో ప్రత్యక్ష ఫోన్ఇన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ స్వీకరణ దశతో పాటు కొత్త ఓటరుగా నమోదు, సవరణలు, చిరునామా మార్పు వంటి అంశాల గురించి శ్రోతల సందేహాలకు నేరుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సమాధానాలు ఇస్తారు. మీరు ఫోన్ చేయవలసిన మా ఫోన్ నంబర్స్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 జత చేసి 23240852, 23240853, 29550923 నెంబర్లకు కాల్ చేయవచ్చు.

0: ఇప్పుడు మీరు వింటారు 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है दोस्तों अभिनव पुंछी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त यानी शाम के 6:30 बजे द एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स. और सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त मैं आपको दे सकती हूँ वो है कबड्डी की दुनिया से, जहाँ हमारी महिलाओं ने आज बांग्लादेश को एक तरफी जीत में शिकस्त दिया है. जी हाँ, द डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ऑब्वियसली वेंट on to defeat Bangladesh 42-21. Before the first half, कह सकते हैं कि first half में भारत के पास जो लीड थी वो थी 21-10 की बांग्लादेश के ऊपर. और फर्स्ट हाफ समाप्त होने के बाद बांग्लादेश बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाया ना कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि भारतीय महिलाओं का दबदबा उनके ऊपर बरकरार रहा. फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाने के बाद भी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि भारत ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया था 21-11 से. और अंत में हम कह सकते हैं जो टोटल पॉइंट्स भारत के पास आए वो थे 42 अंक और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास सिर्फ 21 अंक थे. यानी 42-21 से भारतीय महिलाओं की कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को दे दी शिकस्त. और डिपेंडिंग चैंपियंस होने का जो सरताज हमारे सर के ऊपर है इस वक्त वो हमने अभी भी बरकरार रखा है अभिनव.
3: जी हाँ, कामयाबी हमें मिली कबड्डी में और कामयाबी भी हमें मिली है टेबल टेनिस के कोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को हराया मेंस एंड विमेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में. और इंडियन मेंस टीम को ये जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि याद दिलाए इंडियन मेंस टीम 3-0 हारी थी ईरान से, तो उनको आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था. क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में. अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में, मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज.
2: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से स्ट्रेट गेम्स में हराकर भारत को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहाँ पर लाके खड़ा किया. और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया. एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष. और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर. और इसके बाद सिर्फ श्रीजा कुला को एक नेम से गेम खेलना था, जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको हराया. और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल. और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है.
3: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में. और

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप मेरे रेडियो साथी प्रशांति और विनोद कुमार से आप रिमझिम हैदराबाद सुन रहे थे। सामाइन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 और 22 सेकंड हुआ चाहते हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नारंग।

0: के जरूरतमंद को तमाम अशिया मुहैया कराना है। आज के दौर में सखावत को एक अखलाकी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। अमीर अफराद और कारोबारी इदारे अब सिर्फ अपने मुनाफे पर तवज्जो नहीं देते बल्कि समाजी जिम्मेदारी के मंसूबे में हिस्सा लेते हैं। सखावत और इंसानी माशरा लाजिम और मलजूम है। सखावत सिर्फ इंसानी या इनफरादी नेकी नहीं बल्कि एक ताकतवर समाजी क़ुव्वत है जो माशरे की बुनियादों को मजबूत करती है। ये वो रवैया है जो लोगों के दरमियान मोहब्बत, हमदर्दी, बाहमी तआवुन को फ़रोग देता है और माशरे को ज़्यादा हम आहंग और पायदार बनाता है। बहरकैफ सखावत की रूह असली यह है कि हम अपने पास मौजूद हर चीज़ को दूसरों के लिए बांटने के काबिल बने। यह सिर्फ माल व दौलत तक नहीं बल्कि हमारा वक्त, हमारा इल्म, हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो भी शामिल है। सखावत का जदीद मफहूम सिर्फ माल व दौलत तक महदूद नहीं बल्कि ये इंसानियत के लिए तमाम वसाइल बशमूल वक्त, इल्म, महारत, हमदर्दी को इस्तेमाल करने का नाम है। यह आज के दौर में एक ऐसी खूबी है जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है और माशरे में हम आहंगी पैदा करती है। सखावत इंसानी माशरे की रूह है जो ना सिर्फ इसे ज़िंदा रखती है बल्कि इसे तरक्की की राह पर गामजन करती है। सखावत की रूह हमें यह सिखाती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा वजूद, हमारी खुशी दूसरों की खुशी और फलाह से जुड़ी हुई है। जब हम सखावत करते हैं तो हम सिर्फ किसी की मदद नहीं करते बल्कि हम अपने आप को भी एक बेहतर इंसान साबित करते हैं।
1: सामाइन, अभी आप हरफ ताबिंदा समात फरमा रहे थे। पेशकश डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान की थी।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीम अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए डॉक्टर के मशवरे सुनिए उर्दू प्रोग्राम नैरंग के डॉक्टर माइक पर, हर जुमा रात 9:30 बजे आपके आकाशवाणी हैदराबाद रेनबो FM 101.9 पर।
2: सामाइन, अभी आप बज़्मे रंग सुन रहे हैं। आइए बिसाते गजल के तहत सुनते हैं शायर मोहम्मद महमूद अली जावेद के गजलियात।
3: अर्ज किया है, खरीब होगा लड़कपन तो दौड़ आएगा, खरीब होगा लड़कपन तो दौड़ आएगा, जरा हवा में खिलौना उछाल कर देखो। ये एहतियात भी है बदगुमानी का सबब, ये एहतियात भी है बदगुमानी का सबब, हमारी सिमत न यूं देख।

वो बदन खोने लगे, अपनी रंगत वो बदन खोने लगे, धूप का जिन पर असर होने लगा, धूप का जिन पर असर होने लगा। मख्तास क्या है आखिरी शेर, गुफ्तगू करने लगे हैं हमसे वो, गुफ्तगू करने लगे हैं हमसे वो, रास्ता अब मुख्तसर होने लगा, रास्ता अब मुख्तसर होने लगा। हाय हल्ला हम कभी करते नहीं, क्यों परेशान चार अगर होने लगा, जब खनात का असर होने लगा, दिल गमों से बेखबर होने लगा। एक और गजल से कुछ अशार अर्ज किया है, इश्क में जान निसार कौन करे, इश्क में जान निसार कौन करे, अब यहाँ सच्चा प्यार कौन करे, इश्क में जान निसार कौन करे, अब यहाँ सच्चा प्यार कौन करे, जो दिया वो है तोहफा मौसम का, जो दिया वो है तोहफा मौसम का, अब खजां को बहार कौन करे, अब खजां को बहार कौन करे, सबको पैसे की पड़ गई चाहत, सबको पैसे की पड़ गई चाहत, फूल का कारोबार कौन करे, फूल का कारोबार कौन करे, आज नकदी का जब जमाना है, आज नकदी का जब जमाना है, चाहते फिर उधार कौन करे, चाहते फिर उधार कौन करे, जल रही आग राहे उल्फत में, जल रही आग राहे उल्फत में, देखना है कि पार कौन करे, देखना है कि पार कौन करे, बस तेरा ही तेरा दीवाना हूँ, बस तेरा ही तेरा दीवाना हूँ, मुझको अपना शुमार कौन करे, मुझको अपना शुमार कौन करे, थक थका कर कहा मेरे दिल ने, थक थका कर कहा मेरे दिल ने, उम्र भर इंतजार कौन करे। आखिरी शेर, इश्क सोना है आप कहते थे, इश्क सोना है आप कहते हो, आपका एतबार कौन करे, इश्क सोना है आप कहते हो, आपका एतबार कौन करे, सबको पैसे की पड़ गई चाहत, फूल का कारोबार कौन करे, आज नकदी का जब जमाना है, चाहते फिर उधार कौन करे, इश्क में जान निसार कौन करे, अब यहाँ सच्चा प्यार कौन करे। एक आखिरी गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है, दरिंदों की हिमायत हो रही है, दरिंदों की हिमायत हो रही है, ये कैसी अब सियासत हो रही है, दरिंदों की हिमायत हो रही है, ये कैसी अब सियासत हो रही है। तवज्जो चाहूंगा, जिसे सूली चढ़ाना चाहिए था, जिसे सूली चढ़ाना चाहिए था, उसी की अब हिफाजत हो रही है, उसी की अब हिफाजत हो रही है, जहां बेटी है मरियम और सीता, जहाँ बेटी है मरियम और सीता, वहीं पामाल इस्मत हो रही है, वहीं पामाल इस्मत हो रही है, भला इंसाफ अब कैसे मिलेगा, बिकाओ जब अदालत हो रही है, भला इंसाफ अब कैसे मिलेगा, बिकाओ जब अदालत हो रही है। तवज्जो चाहूँगा शेर पर, कि किसी को आईना जब से दिखाया, किसी को आईना जब से दिखाया, मुसीबत पर मुसीबत हो रही है, किसी को आईना जब से दिखाया, मुसीबत पर मुसीबत हो रही है, ये कैसी अब तरक्की हमने कर ली, ये कैसी अब तरक्की हमने कर ली, बहुत बीमार आदत हो रही है, बहुत बीमार आदत हो रही है। मख्तार्स किया है, हिफाजत घर की जावेद खुद ही करना, हिफाजत घर की जावेद खुद ही करना, लुटेरों की हुकूमत हो रही है, लुटेरों की हुकूमत हो रही है, जहां बेटी है मरियम और सीता, वहीं पामाल इस्मत हो रही है, जिसे सूली चढ़ाना चाहिए था, उसी की अब हिफाजत हो रही है, दरिंदों की हिमायत हो रही है, ये कैसी अब सियासत हो रही है। एक नज्म पेश कर रहा हूँ, कौमी यकजहती के नाम, समात फरमाएं। अर्ज किया है, नफरत भरे जहां में उल्फत के गीत गाएं, नफरत भरे जहां में उल्फत के गीत गाएं, इंसानियत का जज्बा चारों तरफ जगाएं, इंसानियत का जज्बा चारों तरफ जगाएं, भारत में एकता है दुनिया को भी दिखाएं, भारत में एकता है दुनिया को भी दिखाएं, दिवाली ईद क्रिसमस मिलकर सभी मनाएं, दिवाली ईद क्रिसमस मिलकर सभी मनाएं, तंग नजरी तंग दिली से हम क्यों ना बाज आएं, तंग नजरी तंग दिली से हम क्यों ना बाज आएं, उल्फत हवा में घोलें,

0: We now bring you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बढ़ी है, हर मुकाबला

0: है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया, अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नागोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नागोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नागोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से

0: मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: द इंडियन शटलर्स गेव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 टू हेल्प इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। लक्ष्य सेन गेव इंडिया द परफेक्ट स्टार्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द मेन्स टीम फर्स्ट राउंड टाई, डिफीटिंग एमान जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12 एंड thereby putting इंडिया अहेड इन द टाई। Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first-round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं।

0: तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
1: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखें ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
0: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोऊ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
0: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
1: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Srija Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated

0: Abbas Khan, 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Muhammad Khan, 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0. And thereby, the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
2: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko. Unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko. Magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस कर रहा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आध्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
3: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

मोहब्बतों के चिरागों से रोशनी कर दो, मोहब्बतों के चिरागों से रोशनी कर दो, जहां में अमन की खुशबू से ज़िंदगी भर दो। बैनुल अक्वामी योम अमन, जिसे आलमी योम अमन भी कहा जाता है, अक्वामे मुत्तहदा की जानिब से मनाया जाने वाला एक दिन है, जो लोगों और अक्वाम के दरमियान अमन, अदम तशद्दुद और ताउन के फरोग के लिए वक्फ है।

अमन की शमा जलाओ के अंधेरा जाए, अमन की शमा जलाओ के अंधेरा जाए, नफ़रतें दिल से मिटें, प्यार का सवेरा आए। बैनुल अक़वामी यौम अमन, पीर 21 सितंबर 2026 को अमन, अदम तशद्दुद और ताउन के नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए मनाया जा रहा है। ये दिन पुरअमन माशरे की अहमियत और तनाज़ात की रोकथाम और पायदार अमन के क़याम के लिए इज्तमाही कोशिश की जानिब तवज्जो मज़दूल करने का मौका फरहम करता है।

जमी के सर पे खुला आसमान रहने दे, जमी के सर पे खुला आसमान रहने दे, खुदा के वास्ते अमन व अमान रहने दे। बैनुल अक्वामी योम अमन 2026 का सरकारी मौजू अमन में सरमायाकारी करें, सबके लिए हर जगह हर रोज़ है। ये मौजू इस ख्याल को उजागर करता है कि अमन का क़याम सिर्फ हुकूमतों, सिफारतकारों या बैनुल अक्वामी तंजीमों तक महदूद नहीं, ये अफराद और बिरादरियों के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किए जाने वाले इकदामात पर मुनहसिर है। ये देर पा अमन के क़याम में अफराद और बिरादरियों के किरदार को उजागर करता है।

फ़ज़ा ये अमन अमान की सदा क़ायम रखें, फ़ज़ा ये अमन अमान की सदा क़ायम रखे, सुनो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी है हमारा भी है। अक़्वाम मुत्तहिदा को अमन के रोज़मर्रा मीमार करार देता है। ऐसे लोग जो मुकामी सतह पर पुरअमन इक़दामात करते हैं, इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते हैं और पाए

दार अमन के लिए साजगार हालात पैदा करने में मदद देते हैं। 2026 का मौजू अमन को महज जंग की अदम मौजूदगी से बढ़कर भी पेश करता है। ये अमन को तहफ़्फ़ुज़, विकार, मौक़े और ताउन के रोज़मर्रा तजुर्बात से जोड़ता है, जो माशरे को वसी तर आलमी चैलेंजेस से इज्तमाही तौर पर निमटने के काबिल बनाते हैं।

तशद्दुदों की जगह गुफ्तगू ज़रूरी है, तशद्दुदों की जगह गुफ्तगू ज़रूरी है, जहां में अमन की हर सू ज़िया ज़रूरी है। अक़्वामे मुत्तहिदा अमन मुकामले में अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाली सरगर्मियों के ज़रिए ये दिन मनाया जाता है। अमन की घंटी की तकरीब। अक़्वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में अमन की घंटी बजाते हैं। जापान की अक़्वामे मुत्तहिदा एसोसिएशन की जानिब से अतिया की गई ये घंटी अमन की आलमगीर ख्वाहिश की अलामत है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग से मसले हल नहीं होते दुनिया में, जंग से मसले हल नहीं होते दुनिया में, प्यार व अमन से रास्ता निकलता है हर मुश्किल का। अक़्वामे मुत्तहिदा मुस्लिह तनाज़ात में शामिल फरीकों से हथियार डालने, इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत देने और मुकालमे बातचीत के लिए जगह पैदा करने की अपील करता है।

अमन हर शख्स की ज़रूरत है, अमन हर शख्स की ज़रूरत है, इसलिए अमन से मोहब्बत है। आगही की सरगर्मियाँ, अमन ताउन अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए तालीमी, सकाफती और कम्युनिटी सतह की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। यौम अमन की अहमियत, बैनुल अक़वामी यौम अमन पुरअमन और मुस्तहकम माशरे के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर करता है। यह अफराद और माशरे के लिए अमन और अदम तशद्दुद को बुनियादी अकदार के तौर पर फ़रोग देता है। ये तनाज़ात से निमटने के ज़राए के तौर पर मुकालमे और ताउन की हौसला अफजाई करता है।

दिलों में प्यार हो लबों पर दुआए अमन, दिलों में प्यार हो लबों पर दुआए अमन, हर शख के लिए दुनिया में वफाए अमन। ये रियासतों और बैनुल अक्वामी तंजीमों की सिर्फ जिम्मेदारी समझने के बजाय कम्युनिटी समाज की सतह पर अमन साजी की अहमियत को उजागर करता है। ये दिन वसीतर हालात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाता है, जो पुरअमन माशरे की हिमायत करते हैं, जिनमें तहफ्फुज़, वक़ार, मौक़े, ताउन शामिल है। ये इस तस्वुर को तकवीत देता है कि पायदार अमन के लिए अफराद, बिरादरियों और इदारों की जानिब से मुसलसिल कोशिशों की ज़रूरत होती है।

अभी आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा के तहत आलमी योम अमन पर नशरिया सुन रहे थे। सामईन आइए सुनते हैं कल बज़्म रंग में पेश होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल बज़्म रंग का आगाज़ होगा रात 9:30 पर हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश मोहम्मद मशकूर अहमद की है। बेदारी कायनात के तहत साइंस और टेक्नोलॉजी हिंदी कल और आज उनवान पर तकरीर नशर करेंगे। गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में फिल्मी गीत सुनाएंगे। पयाम शब पर हमारा प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। ये था कल पेश होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामईन बज़्म रंग के आखिर में आइए सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है।

एक मोहब्बत ही पे मौकूफ नहीं है ताबिश, कुछ बड़े फैसले हो जाते हैं नादानी में। जिंदगी के बड़े फैसले गुस्से, जज्बात, जिद या वक्ती खुशी में नहीं करने चाहिए। फैसला करने से पहले उसके नताइज पर गौर करें, किसी साहब तजुर्बा शख्स से मशवरा और अपने हालात का हकीकत पसंद आना जायजा जरूरी है। एक लम्हे की नादानी कभी कभी बरसों की परेशानी बन सकती है, इसीलिए जज्बात में नहीं बल्कि समझदारी, सब्र और दूरंदेशी के साथ फैसला करना चाहिए। मोहब्बत हो या जिंदगी का कोई और अहम मामला, फैसला करने से पहले रुक जाना और सोच लेना ही अक्सर इंसान को पछतावे से बचा लेता।

सामाइन, अभी आप पयाम शब समात फरमा रहे थे। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाइन, इसी के साथ ही बज़्म नरंग अपने अख्ताम को पहुँचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब खैर, आदाब।

0: ये आकाशवाणी FM 101.9 MHz पर है। सामाइन, स्टडी की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी खबरें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.

0: गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित. हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स. सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबाउट 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ. देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा.
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
0: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई. HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ. इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे जिसमें 1.9% की गिरावट हुई. पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange

0: Change was negative as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
1: नजर डालने यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ.
0: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund. Mukund, welcome. नमस्कार. सवाल
2: नमस्कार. मुझे ये पूछना है सर जी, SC ST यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे.
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
0: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय का कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका.
3: नहीं मुकुंद जी देखिए, जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें.
1: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
3: नहीं देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो चाहे वो आपका GDP का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है, साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है. लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हुए हैं, अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद FIIs का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में FIIs ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है.
1: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को. रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: हेलो गुड इवनिंग सर, यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? तो दूसरा सवाल है कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू.
3: देखिए रत्नाकर जी, जहां तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पे रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पे लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसका कोई उसकी किसी वजह से था। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहां पे बॉन्ड डील्स हाई थी, वहां की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था।

0: आईटी सेक्टर का,
1: आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूं इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और दुनिया में जो जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक बड़ा विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
0: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है। और दूसरा सर, मैंने आईपीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लू क्या कि मेरा आईपीआर प्रोसेस हो गया है?
1: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला आपने?
2: रिफंड मिल गया है सर मुझे, सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया है।
1: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है। और साथ साथ वो एक, जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेजी थी जो $100, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहां भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीजन, वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेजी देखी।
0: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय ऑनलाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
3: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality affecting the market in the coming days?
1: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yeah, yes, by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So we might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors, plus I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence, because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software

0: or whatever that the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. Mm. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: All right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
0: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी रीजन, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में
1: जी.
0: तो मुझे लगता है इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के
1: जी. दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार मार्केट मंत्री टीम को, नमस्कार. मेरा
1: जी नमस्ते.
2: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो, अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
0: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है, उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा. और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी. ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, उससे अगर आपको कोई भी इनकम, अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी.
3: राइट. नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई. वेलकम
1: रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मित्रा.
1: नमस्ते.
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FIIs जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे, उसका जो है विड्रॉ कर लिए हैं. ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं. और DIIs जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब SIP के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके, वहां तक तो ठीक है. इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा. तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है, ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू.
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है. पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशन दिए थे उनको, उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश FIIs का बढ़ा था. लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका सिद्धांत है निवेश का FIIs का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है. साथ साथ जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा, मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं. तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं. इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं.

0: 4%. Natural gas production dipped by 4.9%. Coal production decelerated by 3.8%. And crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव. केशव जी, स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
2: नमस्कार.
1: नमस्ते.
2: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
3: नहीं केशव जी, देखिए जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है. तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें.
0: An India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijay Dashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
0: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
1: इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में. स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए.
5: नमस्ते. नमस्ते सर. ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल

0: इम्पैक्ट होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो। हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर ₹2,000 तक का लेन देन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2,400 करोड़ से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी, स्वागत आपका, सवाल कीजिए।
2: नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या आप है गुल्लक गुल्लक करके एक ऐप है जो वे एक्चुअली टेक्स द
0: सवाल
2: यूनिट फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर।
0: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से सावधानी से करें जो भी करें।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
1: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 153,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
3: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: जान के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
1: क्या
0: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
1: सपनों में देखा होगा
0: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

अनुपमा फिल्म का यह गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। इससे पहले आप सुन रहे थे आह फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म अनारी का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म सीआईडी के इसी गीत के साथ ही हरसिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। राखी आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर राखी आ गई हैं, लेकिन कुसुम को अब दीजिए इजाजत, जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्ष

0: विश्व में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। अगले महीने की 29 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

नजरें ठहर जाती हैं और दिल बस उस चेहरे को निहारते रहने की ख्वाहिश रखता है। हुस्न जब पर्दे में हो तो उसकी कशिश और भी बढ़ जाती है, और फिर दिल की यही गुजारिश होती है, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। मेरे हुजूर फिल्म का आपने गाना सुना रफी की आवाज में। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

रात में धड़कने लगे तो उसकी हर धड़कन एक ही बात कहती है, ये दिल तो दीवाना है। इश्क पर जोर नहीं फिल्म से आपने ये गीत सुना। लता मंगेशकर और रफी की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए तर्क नहीं, बस दिल की जरूरत होती है। और जब यही दिल किसी की याद

नजरों का भी अपना एक खेल है। सामने कोई हो और बीच में एक पर्दा, तो बेचैनी और बढ़ जाती है। दिल चाहता है कि ये दूरी, ये रुकावट जरा हटे और सामने वाले का दीदार हो जाए। महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती

आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 12 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

इस खूबसूरत गीत की कल्पना में आने वाले कल की एक ऐसी तस्वीर है जहां आसमान सितारों से सजा हो, सावन की फुहारें मन को भिगो रही हो और जिंदगी किसी हसीन सपने की तरह महसूस हो। उम्मीद, प्यार और साथ से बुना ये गीत जैसे कहता है कि जब अपना कोई साथ हो तो साधारण सी जिंदगी भी एक खूबसूरत सपना बन जाती है। जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आपने सुना रफी और लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो आंखें भी उसके उजाले से रोशन हो जाती हैं, और फिर दिल यही ख्वाहिश करता है कि उस खूबसूरत एहसास की लौ कभी ना बुझे। अनुराग फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 47 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहब्बत में साथ निभाने का वादा जब दिल से किया जाए तो हर दूरी छोटी लगने लगती है। कुछ ऐसे ही अटूट भरोसे और साथ की बात करता है ये अगला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, जहां दो दिल एक दूसरे से जुदा ना होने की कसम लेते हैं।

कुछ रिश्ते सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं होते, बल्कि उम्र भर एक दूसरे का हाथ थामे रहने का वादा होते हैं। जहां मोहब्बत में कोई फासला मायने नहीं रखता, बस एक ही यकीन दिल में रहता है कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 18 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा।

0: रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry yesterday signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra.

वक्त हुआ है 1:10 और वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

कभी कभी मोहब्बत के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, एक नजर, एक मुस्कान और कुछ अनकहे इशारे ही दिल तक पहुंच जाते हैं। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

कभी किसी को अपने ख्वाबों में देखा हो और फिर वही शख्स हकीकत बनकर सामने आ जाए तो दिल की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां महबूब को देखकर लगता है जैसे बरसों पहले दिल ने जिसकी तस्वीर बनाई थी आज वही सामने आ खड़ी हुई है। हिमालय की गोद में फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जब दिल में मोहब्बत पहली बार दस्तक देती है तो रातें भी छोटी लगने लगती हैं और नींद आंखों से जैसे रूठ सी जाती है। दिल में हजारों सवाल उठते हैं और हर सवाल का जवाब बस आने वाला वक्त जानता है। हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने ये गीत सुना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म

प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: कुछ मुलाकातें खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। उनकी याद दिल में एक अगली मुलाकात की उम्मीद लगा देती है। इसी मीठे इंतजार और फिर मिलने की चाहत को इस खूबसूरत गीत ने आवाज दी। 20 साल बाद फिल्म का गीत आपने सुना, माफ कीजिएगा, ये रात फिर ना आएगी फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

जाने वाले को रोक लेने की वो मासूम सी कोशिश, जब दिल अपनी बेचैनी को शब्दों में कह देता है, मोहब्बत में कभी कभी एक छोटी सी गुजारिश भी बहुत कुछ कह जाती है, बस लौट आने की आस और साथ बने रहने की चाह। 20 साल बाद फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

याद जब किसी खास शख्स की आए तो मौसम भी जैसे उसी के नाम का हो जाता है। बहार झूमती है लेकिन दिल को तलाश रहती है उस आवाज की, जो दूर होकर भी बहुत करीब महसूस होती है। पतिता फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत

0: शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत हैं। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The chief electoral officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. The Election Commission

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है और खामोशी धीरे धीरे चारों ओर उतरने लगती है, तब दिल को बस एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे मन की बात समझ ले। ऐसे ही नर्म सुकून भरी रात में पुराने फिल्मी गीत यादों की खिड़की खोलते हैं और हमें अपने साथ उन खूबसूरत पलों में ले जाते हैं जहां बस संगीत है, एहसास है और दिल की हल्की सी धड़कन।

कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बस सिर छुपाने को थोड़ी सी जमीन, सपनों को छूने को थोड़ा सा आसमान, और तिनकों से बना एक छोटा सा आशियाना, जहां अपनेपन की गर्माहट हो और सुकून से भरी सांसें। सितारा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मासूम सी शरारत, प्यार से भरी हुई कल्पना और अपने प्रिय के लिए कुछ कर गुजरने का मीठा सा एहसास, इसी भावनाओं को समेटे था ये प्यारा सा खूबसूरत गीत। नमकीन फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। आरडी बर्मन ने दिया संगीत और इस गीत को लिखा गुलजार ने।

रात की खामोशी जब धीरे धीरे अपने आगोश में सब कुछ समेट लेती है तो लगता है जैसे चांदनी भी ठहर गई हो और आसमान ने भी आंखें मूंद ली हो। ऐसी ही एक शांत सुहानी रात और उसमें घुली एक बेहद खूबसूरत धुन, नीला आसमान सो गया। सिलसिला फिल्म का ये गाना आपने सुना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बीते हुए लम्हों की यही तो खूबसूरती है। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर यादें वहीं ठहर जाती हैं। कोई पुरानी बात, कोई चेहरा, कोई मुलाकात और अचानक गुजरा हुआ कल फिर से आंखों के सामने आ जाता है। बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी भूपिंदर की आवाज में। इसे लिखा बहार नवाज ने और संगीत दिया खयाम ने।

कुछ रिश्ते जिंदगी में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी अलग अपने आप से महसूस होती ही नहीं। वो हमारी हर खुशी, हर एहसास और हर पल का हिस्सा बन जाते हैं। आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में, निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा अमीर मीनाई ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन बाद आपसे गुफ्तगू करने हम फिर से आ गए हैं और हम भी उदास हो जाते हैं अगर आपसे ज्यादा दिन तक बातचीत ना हो। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? फासले मिट गए तो ये जाना, फासले मिट गए तो ये जाना, वक्त लगता है अपनों को पाने में।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म राम लखन से अभी आपने गीत सुना। खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, वो आज मेरी तकदीर बन गया। तेरे होने से मेरा ये जिंदगी का सफर एक खूबसूरत तस्वीर बन गया।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बरसात की एक रात से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब हम किसी को चाहते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये बंजर दिल फूलों की तरह खिल गया हो और चेहरा खुशी से सरोबार हो जाता है। फिर चाहे ये खता हो या फिर सजा, दोनों ही अच्छा लगता है।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म छोटी सी मुलाकात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।
1: जब जब

वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो हाथ ही क्या जो मुश्किल में छूट जाए। अगर किया है वादा किसी से साथ निभाने का, तो फिर

वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो हाथ ही क्या जो मुश्किल में छूट जाए। अगर किया है वादा किसी से साथ निभाने का, तो फिर चाहे जमाना भी हमसे क्यों ना रूठ जाए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हाथ की सफाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से आपने अभी ये गीत सुना। और दोस्तों, प्यार का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, और चोरी चोरी से ये रिश्ता एक खूबसूरत सी डोर में बंध जाता है, और फिर उस रिश्ते के बिना जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी से अभी आपने गीत सुना। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने के लिए कार्ययोजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह की 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को इस सुहानी सुबह में मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह का समय है और मौसम ने भी अब थोड़ी सी करवट ले ली है और ऐसी सुहानी सुबह में दिल चाहता है कि कहीं चला जाए। अब कहाँ चला जाए ये आप तय करेंगे अपने इस समय को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए।

मुकेश की आवाज में फिल्म इशारा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन के दिन तो छोटे ही हैं, ये हम सभी को पता है, पर फिर भी हम उसे नाराजगी, गुस्से, नफरत में ही बिता देते हैं। क्यों ना जिंदगी को बड़े दिल वाला बन के जिया जाए, एकदम बिंदास।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बड़े दिलवाला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह से नदी अपनी मस्ती में चलती रहती है बिना कहीं रुके, इधर उधर देखे बिना, वैसे ही जिंदगी में हमें भी अपनी मस्ती में जीते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म सफर से ये गीत।

सुबह के 4:24 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म बाबू से।

दोस्तों, हम किसी के चेहरे को देखकर ही जजमेंट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, पर जब हम उससे मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तभी हमें पता लगता है कि आदमी सही है या नहीं। और दोस्तों, दिल को देखिए, चेहरे को नहीं। आइए सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आज़ाद से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के दिन चाहे जितने भी हों, बस ऐसे हों जिसमें प्यार हो, एहसास हो, सुकून हो और विश्वास हो और नफरत द्वेष की कहीं भी जगह ना हो।

और हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद भी लगी रहती है, पर उम्मीद सिर्फ अपने आप से ही रखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आप अपनी मंजिल को भी पाने में कामयाब रहेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म सच्चाई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हमारा दिल एक आस के पंछी की तरह

हस्ती चमकेगा एक दिन मुकद्दर आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर

छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी।

关机。सुबीर सेन की आवाज़ में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

बिल्कुल दोस्तों, दुनिया सुहानी ही लगती है अगर आपका मन अच्छा है और आप खुश हैं। जिंदगी में अगर प्यार है, अपनापन है, तो आप अपने आप ही हमेशा गाते मुस्कुराते रहेंगे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह ही हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सभी जगह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भक्ति का माहौल है और हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। तो आइए हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं गणेश जी के भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन ने।

दोस्तों, प्रभु का नाम लेते ही मन एकदम शांत हो जाता है और उस प्रभु का जब इशारा होता है और तभी हमारे काम होते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं।

0: फिल्म बरखा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस कलयुग में दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देख के ही चलो तो बहुत अच्छा है, ना जाने कौन कब आकर अपनी होशियारी दिखा जाए। आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।
1: ए भाई दर्द।

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: पर इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

सुबह के 5:25 और 45 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 101 MHz पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।